चर ते कुटक हे ते हे हल ते चक ते हल हल तो तक हे चको ची के चक तो ची के हे चको ची के चक तो ची के हे चको ची के चक तो ची के हे कुंबल तो कुंबल तार तार हे कुंबल कुंबल तार कचे चक बाल तक हे तक हे तार चक तक तक हे चको ची के चक तो ची के हे हे चको कुंबल तार तार हे चको ची के चक तो